दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहलानंदर, दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहलानंदर। ओ लाल मेरे, ओ लाल मेरे। दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर ईशा भाग कलंदर पोला में।